0: ओम शलपुर्ज महादेव की जय,
1: जय।
0: देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय, सुदीप नारायण भगवान की जय, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय,
1: जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु, ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सल्यूटेशंस टू द कॉस्मिक सेल्फ, सल्यूटेशंस टू शैल पुरुष सिद्धपीठ परंपरा। माय डन प्रणाम स्व बिलव्ड गुरुदेव इस ऑलनेस विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद गुरुजी। ओम नमो नारायण टू द ऑल द सन्यासीज प्रेजेंट हियर एंड हरि ओम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बिफोर जारन यूज टू बी मेजॉरिटी ऑफ ऑरेंजेस, नाउ वी आर मोर ऑफ बनानाज, इट्स गुड। गुड बैलेंस, अदरवाइज वी आर ऑलवेज फुल, मेजॉरिटी इज ऑलवेज द ऑरेंज पीपल। So, as you know, a few days back I went to the Mahasamadhi of Gita Bharatiji. Many of you saw her, had her darshan, met her in various places. I think in 2016 or 17, she was also here in Jaran. There was some program going on and there was a tent near Mataji Samadhi. And, huh? 15, 1 year before Kumbh.

0: नरेम भगवान की जय। शिष्य विश्वगुंदेश्वर परम स्वामी मश्रंज गुरुदेव
1: की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
0: सिद्धिप्तनयम भगवान की जय। श्री श्री विश्वगुंदेश्वर परम स्वामी मश्रंज गुरुदेव की जय।

ओम बोले सिद्धेव नारायण भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।

0: ओम मुले श्रीदीप नारायण भगवान
1: की जय
0: श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय
0: श्री अलकपुरीश महादेव
1: की जय
0: श्री स्वामी माधवानंद होली गुरु जी की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

तो बोला कि ऐसे पापी के हाथ का भोजन हम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ का अन्न खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आई डोंट ईट द फूड फ्रॉम सच ए सिनर्स हैंड्स, इफ आई डू माई इंटेलेक्ट माई बुद्धि विल बी कंफ्यूज लॉस्ट पोल्यूटेड। But he said, but you have to eat today. Master said, no, I will not eat. He said, okay, went away. But inside his, to make his sankalpa, in any case today, he have to eat my food. महाराज ने कहा कि हम नहीं लेंगे डाकू के हाथ का भोजन, चोर के हाथ का भोजन, खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो घोड़े पे चढ़ के चला गया डाकू, लेकिन मन ही मन में विचार करता है, चाहे कुछ भी हो, बाबा जी को आज मेरा ही भोजन खिलाया जाएगा। महाराज ही वॉज सिटिंग इन मेडिटेशन एंड दैट डाकू बंडिट वेंट टू वनर restaurant, to some farmer have a little restaurant also. When they saw the bandit is coming, oh God, can you imagine? They thought today was a Friday and the cat was crossing the way. He came down, they said, yes sir, good morning sir. He said, okay. There is sitting one sadhu 2 kilometers far away under the tree. Take nice food and give him to eat. They said, yes, sir, we will do. But here is the money. They said, no, boy, we don't need money. We will do it. We are happy to do for you. He said, no, today I give you money. Next time I will not give. But now, today I give you money. कोई छोटा होटल था वहां डाकू को देख करके वो तो बेचारे घबरा गए। अरे वो राक्षस कटवाई गयो, घोड़े से उतर के आके बोला कि 2 किलोमीटर दूर महात्मा बैठा है खेजड़ी के नीचे, भोजन कराना है और ये पैसे ले। तो बोला पैसे नहीं चाहिए, हम सेवा कर लेंगे। क्या नहीं, आज तो मैं पैसा दूंगा ही, दूसरी बार आएंगे नहीं लेंगे। जाओ बढ़िया से बढ़िया भोजन बना करके खिला करके आ जाना बस। वेल दे वेंट, दे टुक द फूड एंड दे वेंट टू बाबा जी। बाबा जी सो सम पर्सन इज कमिंग विद द फूड। आओ भक्त, कम वेलकम भक्ता, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट आर यू डूइंग? ही सेड, आई हैव ए लिटिल रेस्टोरेंट। All right. Prabhu, would you accept my food? I said, yes. Tum kaun ho? Ki main chota mazdoor hoon, restaurant hai. Achha. Prabhu, hum aapke liye kuch prasad bhojan laaye, khaiye, khilao beta, kha liya. While eating, his buddhi changed. Now, if you drink slowly, slowly glass milk, you become nice, happy and relaxed. But you drink slowly, slowly vodka or whiskey, after half glass, you feel here the bees inside. Huh? Now the Maharaj is thinking, Babaji, आज तो कहीं गांव में जाना चाहिए, जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए। अरे जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए, अब तो कहीं गांव में जाना चाहिए, भक्तों को दर्शन कर देना चाहिए। बोरिंग सिटिंग अंडर द ट्री सो मेनी इयर्स, नाउ आई शुड गो टू सम विलेज एंड गिव सत्संग। केम, there was a beautiful small Shiva temple
near the village, very near, close. He asked the Pandit Pujari if there's a room. They said, yes, there's one room for sadhus to stay. He stayed there. Evening prayer, and he came to prayer. There was a beautiful Shiva statue, not only Shiva Lingam, made out of gold. Now the food of the bandit is working in his blood. They were making prayer and he was hypnotized by statue gold. Gold. Many years he didn't see any gold. Now he decided to steal the Shiva statue. How to take away? Trick. All people went to sleep and 2 o'clock he woke up, went to Shiva's temple, and statue was very strong, tied, fixed by good worker, a good engineer like Yogesh, you know. You can't move. So Babaji took this statue like this and he was doing half hour like this. My Lord Shiva, come to me. Come here, my dear Lord Shiva. In my heart I made temple for you. Moving. Come on, Lord. Move up, move up. Statue came out. Sweating, tired, blue spots. Took it and went away. Hari Om. Babaji gaav ke andar aaye. Dekha ki Shankar ka mandir, pujari ko kaha ki rehne ke liye jagah hai, ki ye kamra hai. Sadhuon ke liye wahan ruk gaya. Shyam ko aarti mein aaye. Bhagwan Shiv ki bahut sundar ek murti thi, sone ki, kareeb 5 kilo ki. Aarti ho rahi thi, sona chamak raha hai. Baba ji to dekh karke pagal ho gaye ki zindagi mein itna sona kabhi dekha hi nahi. Kitna jaldi isko leke chala jaun paar kare. रात के 2 बजे बाबा जी उठ करके मंदिर का दरवाजा का ताला तोड़ करके अंदर गए और मूर्ति को पकड़ के, बहुत मजबूत काम था योगेश जी की तरह, लेकिन बड़ी मुश्किल से मूर्ति को जैसे तैसे निकाला और 3 बजे लेके बग गया. 2:30 बजे पुजारी पूजा कर, 3:30 बजे पूजा करने को आया, देखा कि मूर्ति है ही नहीं. घंटी बजाई जोर जोर जोर से तो गांव के लोग दौड़ करके आए. 3:30 द पंडित जी केम फॉर पूजा. टेम्पल डोर वॉज ओपन. शिव जी वॉज नॉट देयर ऑन द अल्टार. ही रेंग द बेल लॉन्ग. And the village people were running, coming, what happened? Strong people like Jasraji and Premananji, and they were running. Came, what happened, Panditji? Statue is stolen. Do you know anybody? Came, I don't know any. If I stay anybody here, one sadhu is staying in the room. They went there, there's no sadhu. They took the torch light. They saw the steps running. That time was no concrete CC road, you know. There was only sand road. Sandy road. So, young people were running and Babaji had a Shiva statue and running. सभी गांव के लोग आए, देखा कि शिव जी की मूर्ति चुरा गई. पंडित बोला कि गई का पता नहीं किधर. कोई यहां आए थे क्या? बोला एक महाराज रुके हुए, और कोई नहीं है. जाके देखा कि कमरे में महाराज जी भी नहीं.
बैटरी से देखा कि वहां पैरों के चिन्ह मंडे हुए। उस समय ये सीसी रोड डामर की रोड होती नहीं थी। किधर भगा

पाव। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहा जो सोवत है। प्रकाश होने लगा, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्ता, बाबा जी जा रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो लोग भी दौड़ रहे हैं, बाबा जी भी मजबूत थे। बाबा जी ने देखा पीछे की फौज आ रही है, अब क्या करे। लेकिन दौड़ने से करने से बाबा जी का वो डाकू का चोर का खाना खाया था ना अन्न, वो पच गया, पसीने से पच करके निकल गया और वापस सद्बुद्धि आ गई। अब बाबा जी सोचे कि कहूंगा कि मैं चोरी करने को आया, तब तो रिपेयरिंग हो जाएगी। हा तपस्या टीज पूरी। देखा भाग्य सेवा एक तालाब था, पानी की झील, सुंदर निर्मल जल। दौड़ करके गए पानी की झील के अंदर, डुबकी लगाई और मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो आए गए डाकू चोर कि बोला चुप रहो, जल्दी आओ, तुम भी लाभ ले लो, स्नान कराओ। रात को शंकर भगवान मेरे पास आए कि कई बरस हो गए मुझे स्नान नहीं कराया, मेरे को तो पानी की झील में नहाना है। हे भगत, तू ही मुझे समझता है, दूसरे गृहस्थी नहीं समझते। आ तू जल्दी कर, स्नान कराओ। दिन उदय होने से पहले पहले जाकर के भगवान को वापस सिंहासन में बिठाना, चलो बेटा जल्दी आओ। सब कहते हे महाराज बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव की जय हो। मूर्ति को स्नान करा करके लेके आके रखा और आरती बोली, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश। बच गया, बुद्धि वापस आ गई। तो व्हाट हैपन, ही टुक द एंड रन अवे द यंग पीपल फ्रॉम द विलेज, दे वर रनिंग बिहाइंड। Dawn came and the Babaji looked behind, they are running some bodybuilders. Now what to do? If I will tell, Babaji is thinking, that I have stolen the statue, then today they will repair my mind. What to do? What to do? Lord help me. But while running, while hard work, sweating, and so many hours already, nearly 18 hours after eating, that the food of the thief was digested and sweated out. Again, normal intellect appeared. What to do? Luckily, there is always luck in bad luck. There was a beautiful lake. So he ran into the lake and began to bath the Lord Shiva. And people came, thief, thief. He said, stop, silent, don't talk. Lord Shiva came in the night to me and said, so many years I did not bath. The village people present me in the temple. Please, Swamiji, can you help me to bath? So I promised him, before sunrise, we will bring you back to your holy place. So come quickly, wash him. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Harar Gange Mahadev, Harar Gange, Gange Gange Harar, Bhole Shambhu, come on. Oil was giving water, washing the

निष्ठ हो जाएगी। इसीलिए कहा कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग दिया जाता है। मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करके क्या लगता है मेरा। हे प्रभु, हमें महाप्रसादी ही दीजिए, ब्रह्मार्पणम। हम अर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, भगवान का दिया हुआ भगवान को चढ़ाते हैं, फिर बाद में जो होता है हम लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी वृत्ति है या ऐसी कोई ऐसे प्राण उसके अंदर हो, उस अनाज के अंदर, तो वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। एक बार गुरुजी ने कहा कि महेश, मेरे सिर दर्द हो जाता, अभी पता नहीं ध्यान करता तो, तीन चार बार गुरुजी फरमाए बोला, तो मैंने कहा कैसे करते आप ध्यान? तो गुरुजी ने कहा कि यहां बाप महाप्रभु जी की सभी विराज रहे हैं और मैं मेरे महाप्रभु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर जो प्रकाश अमृत निकलता है उसका पान करता हूं और उसी के आधार पर मैंने भजन भी लिखा। महाप्रभु जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि वो इतना आनंद है कि उसका कोई पार ही नहीं है। तो वो कब पूर्ण होगा, वो कब भरेगा? तो बाप जी ने वो भजन लिखा कि प्रेम का प्याला हरी कब मेरा भर से, ये मेरा प्रेम रूपी प्याला जो है प्रभु कब पूर्ण हो जाएगा, कब भर जाएगा? तो मैंने कहा महाप्रभु जी को यहां से अब हृदय चक्र में ध्यान कराओ आप। दूसरे दिन आया तो बाप जी कहते मेरे तो है तो गड़बड़ कर दी। मैं क्यों? कि महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया अनाहत से, आज्ञा से अनाहत, और सब मेरी वृत्तियों का ध्यान का वो। मैंने कहा हो तो वापस वैसे ही करें आप। बोला नहीं नहीं अब ट्राई करूंगा इधर भी। तो ध्यान की विधि होती है, महापुरुषों को ये अनुभव होता है, गुरुजी को होता था, और हम लोग जो ध्यान करने को बैठते तो क्या होता है, चलो लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र बोलते, काम पे तो जाना है ही है। वो इतना आदमी इतना बेकार है, वो पैसा ले गए वापस देने का सोच ही नहीं रहा है। खैर बच्चों की शादी भी करनी चाहिए। अब ध्यान कर रहे हो कि ये वृत्ति विचार कर रहे हो? इसलिए कहा है कि हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा हमारी चेतना के अंदर, चित्त के अंदर जो वृत्तियां विचार चल रहे हैं इनको निरोग नहीं करेंगे, निरोध नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं जब तक हम हमारे अगले गंतव्य या अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वृत्ति का निरोध करने के लिए अतः योगानुशासनम, अनुशासन जीवन जीना पड़ेगा। अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है, अनुशासन ही परिवार को मजबूत, समाज को मजबूत, और अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। जहां अनुशासन नहीं रहा वहां सब मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव का ये भजन जब मैं गाता हूं तो बाप जी की वो मनोहर सभी सामने आती है, मुस्कान आती है और कहते हैं कि तुमने महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया। मैंने कहा बाप जी ट्रांसपोर्ट नहीं किया। तो डॉक्टर शांति विल सिंह नाउ दिस भजन, प्रेम का प्याला हरी कब मेरा भर से। दीप नारायण भगवान की। तो टुडे आई स्पोक अबाउट अन्नमया कोशा, टुमारो लेट्स कम टू द प्राणमय कोशा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच, दिस आर द फाइव डिफरेंट चैम्बर्स। विद इन दिस फाइव इज दैट जीवात्मा एंड आत्मा दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड, देन दिस रेडियंस, द रेजोनेंस।

ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ओम शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। माधव कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, सैल्यूटेशन टू द कॉस्मिक लाइट, एडोरेशन टू द डिवाइन मास्टर्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। Nice to be again in the Vancouver, and I enjoy to go to the Stanley Park to take the lot of oxygen. Vancouver as well as Vienna have the same category of the good environment, good fresh air, and both Vancouver and Vienna have the same horoscope according to the astrology. Well, we are here to hear something about yoga. Yoga is like a forever milky cow. Every day gives you new milk, fresh milk. It means it is a source of knowledge, and knowledge

की, धर्म सम्राट सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस त्राटक। त्राटक इज वन ऑफ द सिक्स क्रियाज ऑफ हठ योगा। नेति, दावती, बस्ती, नावली, कपालभाति एंड त्राटक।

हरि ओम। नाउ स्लोली लाइक दिस फ्रॉम अबव 10 सेंटीमीटर अबव द कैंडल यू ब्लो ऑफ द फ्लेम लाइक दिस। वेरी गुड, थैंक यू। सो टुडे प्रैक्टिस इज फिनिश्ड and wish you all the best. Remain there where you are, don't move your candles, let them become

देवादिदेव देवेश्वर महादेव अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

0: भगवान की
1: जय।
0: देवादि देव देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: दीप नारायण भगवान की अलखपुरी जी महादेव
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।
0: सत्संग, सत मीन्स द ट्रूथ एंड संग विद द भक्तास। Those who come for satsang, it means who is the truth person, who is searching for the personality of the truth. And that's why only they can come who is the bhaktas. Sat Sang means living together, sitting together like brother, sisters, friends, bhakta, yogis, etc. We can read many holy books. There are many, many books.